इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

बस यही तो किया था कि हम जरा हौसला मंद हुए, फिर जिंदगी के दरवाजे क्यों हमारे लिए ही बंद हुए।

पैर थकेंगे, आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आए थी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: Chinar Beats with RJ Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्द।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।
2: रेडियो चुनार।

0: What's up, Kashmir?
1: किसे नहीं मरने दोगे? ये क्या हो गया तुम्हें? हाँ? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है। और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

दोस्तों हरदेव के दर्कन रेडियो चैनल 90.4 FM याद रखिए आप सुन रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सएप फॉलो शेयर सब्सक्राइब करें रेडियो चैनल के ऑफिशियल हैंडल्स को फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम एक्स पर साथ ही डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी कोने में मजीद मालूमात के लिए लॉग इन टू www.radiochennai.com

0: Zeus. Kom nou ja.
1: Radio Chennai, weather update.
2: Radio Chennai, your hottest frequency, brother. How's your weather?
1: Radio Chennai, weather update.
2: तो ढेर सारी है जो हम रोज की तरह आज भी आपके साथ बतियाएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी अपने दिल की हम तक पहुंचाएंगे. जी हाँ, आपका साथ जो बनाता है शो का खास, अपना साथ निभाने के लिए साथी हाथ जरूर बढ़ाना. आपने अपने व्यूज, इमोशंस, थॉट्स को हम तक पहुंचाना. याद रखिए 8899-04904 इज द नंबर जो आपके दिलों के तार हमारे दिलों से जोड़ता है.
1: वेदर अपडेट
2: 8899-04904 याद पर तुम कॉल है क्यों करित, व्हाट्सएप या है क्यों करित, टेक्स्ट मैसेज,
1: वेदर अपडेट
2: डीएम भी कर सकते हैं आप. जॉक ज्यूस के नाम से मिलूंगा इंस्टाग्राम पर, JOCKEUS. आईडी पर डीएम करके भी आप शो में शामिल हो सकते हैं. फिलहाल आइए करते हैं वेदर की बात. जी हाँ, कल के मुकाबले 2 degrees ज्यादा, आज होगा दिन सनी. इट्स मोस्टली सनी फॉर टुडे. आज दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 27 degrees Celsius.
1: वेदर अपडेट.
2: सूरज पूरी उफान पर रहेगा. इट इज सनी एज आई सेड. आज दिन है सनी सनी सनी सनी सनी सनी और म्यूजिक भी है संग संग हानी. तो आप भी का हाल क्या है बताते हैं. यू इंडेक्स सभी के लिए वीक पर और ह्यूमिडिटी

0: 92%, wind speed है 0 पर, visibility 4 kilometers, आज का sunrise हुआ 6:25 पर, आज का sunset होगा 6:19 पर। जी हाँ, हर दिल की धड़कन को जोरों से धड़काइए, रेडियो चुनार खोल कर बजाइए, एयर फ्रेम म्यूजिक का वादा रेडियो चुनार सबसे ज्यादा।
1: Ever since
0: आप सभी सुनने वालों के लिए one of the famous tracks from social media, Instagram, YouTube, it was trending, it's still trending. The title of the track is Pia Garaya. It's a remix by Asad. और असद इज वन ऑफ द आर्टिस्ट जिसने बहुत ही कम टाइम में अपना नाम अपना सिक्का जमाया, एंड इट इज अ ग्रेट ट्रैक। तो भैया वॉल्यूम बढ़ाना बनता है और सबको सुनाना बनता है, हर दिल की धड़कन को जोरों से धड़काना बनता है। भूलना नहीं कि आपने अपने हाथ को हमारे हाथ में देकर हर दिल की धड़कन को और जोर से धड़काना है। 8999904904 इज द नंबर।
1: यू विद मी,
0: यस यू गॉट टू बी विद मी, सिटी हक्ड, धड़काते रहो।

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

0: कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे,
2: व्हाट्सएप पे
3: दोस्तों, रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर वायरल ऑन व्हाट्सएप, क्योंकि जब वायरल

होता है तो वह सफर आ ही जाता है। एक ऐसा सेगमेंट जहां पर जो वायरल होता है हम पहुंचाते हैं अब तक, और वायरल ऑन व्हाट्सएप पर आइए बात करते हैं कि ऐसे पोस्ट की जिसने इंटरनेट हिला दिया। एक ऑस्ट्रेलियन इंसेक्ट जो कि रिसेंटली डिस्कवर हुआ और टेलर स्विफ्ट के नाम पर उसका नाम रखा गया। जी हाँ, टेलर स्विफ्ट का नाम और उनके म्यूजिक एल्बम्स को लेकर उसका नाम रखा गया स्विफ्टाइफाइलस। अब ये जो नाम है इट इज रिलेटेड टू रेफरेंसेस फॉर टेलर स्विफ्ट एंड हर म्यूजिक इंक्लूडिंग लव एंड फियरलेसनेस। अब ये होती है मशहूरी, जब भी इस इंसेक्ट को याद रखा जाएगा, याद किया जाएगा या इस पर रिसर्च फर्दर होगी तो टेलर स्विफ्ट, वैसे टेलर स्विफ्ट का नाम तो कतई मशहूर मैरूफ है। वायरल था तभी व्हाट्सएप पर है। आप सुन रहे रेडियो चैनल की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर मजेदार शो व्हाट्सएप। मैं हूं जॉग ज्यूस, मेरी जान सरेहट दरगाह।

0: आरजे ज्यूस।
1: हेलो, मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय, मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
4: दोस्तों, रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन शो वसबर वसब शो में आज का कोट ऑफ द डे। आज का कोट कहता है, योर हार्ट नोज द वे, रन इन दैट डायरेक्शन। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन श्रेय

0: bunch of zoos. Come on now.
1: कर रहे हैं यहाँ पर हम मिलकर हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 FM. मैं हूँ जॉक्सियस, आप सुन रहे हैं मस्तार शो. और व्हाट्सएप शो का हिस्सा बनने के लिए 8899-04904 इज द नंबर. 8899-04904. और ये जो साथ है दोपहर के 2:00 बजे आने हम और आप साथ साथ हैं और साथ यूं ही जारी रहेगा. और आपने भी साथ है निभाना, अपनी बात को हम तक पहुंचाना. हम पहुंचाएंगे वहां जहां जहां जाती है रेडियो जनौर की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी. तो यह वक्त हो चला है टॉपिक आप तक पहुंचा दिया जाए, एक थीम जिससे रिलेटेड हम बात करते हैं और उसके बाद वेस्टर्न म्यूजिकल शो आई फील गुड भी तो आप तक पहुँचाना है. यहाँ आपने कहीं नहीं छोड़कर जाना है, नहीं चलेगा कोई. जो आपके दिल में बहाना है सो हर दिल के धड़कन को मिलकर धड़कना है. जी तड़क तड़क करके ही जाएंगे. अब भाई आया तो टॉपिक बताकर जाएगा, लेकिन उससे पहले आप तक पहुंचाएंगे कुछ लिसनर्स के मैसेज. आतिफ एट द रेट बैड बॉय, ओह वाओ, लाइक साउंड्स फैमिलियर. जी हाँ, हमारे साथ जुड़े हैं एंड इट्स ऑन द इंस्टाग्राम, जिन्होंने लिखा है कि भाई आपको फॉलो करता हूँ और सुनता भी हूँ आपकी बातें. न जाने क्यों आपकी बातें दिल को छू कर जाती है. मतलब आए हाय पगले पसकर रुलाई का क्या. अब बातें यह हैं कि अगर आपको अच्छी लगती है तो खुशनसीबी है मेरी. और अच्छी बातों में से जो आपको अच्छी लगती है उन्हें रखिए और जो अच्छी नहीं लगती उन्हें ट्रैश कर दीजिए. अब ये है कि ये रूल जो है ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए और जो भी आपको अच्छा लगता है उसे अपने हिसाब से रिचेक करके मॉडिफाई करके अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए. क्या है उससे जीवन सरल सुरक्षित और आसान रहता है. थैंक यू सो मच आतिफ हमसे जुड़ने के लिए. यूसुफ हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं यूसुफ सर, इट इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम टेक्सटिंग यू एंड मोर ओवर एनीथिंग इट इज़ द टाइम दैट आई फेल्ट लाइक आई शुड टेक्स्ट यू. कहना चाहता हूँ दैट आई लव यू टू माई फ्रेंड एंड गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच हमसे कनेक्ट करने के लिए. और भैया आज हम बात करने वाले हैं उन ब्रेव हार्ट्स की जो दुनिया में रहकर दुनिया की वाणी दुनिया की आवाज़ बनते हैं, अपने कैमरा से करके दुनिया तक पहुंचाते हैं हकीकत सच्चाई और जो भी करंट न्यूज है. बिल्कुल सही समझा आपने, आज हम बात करने वाले हैं फोटो जर्नलिज्म की. जी हाँ, आपने बड़े बड़े कैमरास तो देखे होंगे, बड़े बड़े कैमरास के पीछे बड़ी बड़ी की आवाज तो आती रहती है रे. लेकिन इनके पीछे में जो मेहनत है, मशक्कत है, हार्ड वर्क है और जो जिंदगी करवाती टॉर्क है वो आज हम बताएंगे. आज हम बताएंगे आपको कि क्या है एक्चुअल में फोटो जर्नलिज्म. तो फोटो जर्नलिज्म की बात आई है तो एक फोटो वाला गाना तो बनता है मेरे दोस्त. गाना सुनकर जाना हर दिल की धड़कन को जोर से धड़काना क्योंकि गाना है Radio Channel 90.4 FM. This track is from movie Pushpa to the Rule. Main hoon Jogsus, Radio Channel ki hottest frequency par stay hooked. Dalgate raho.

0: लिंक दिया
1: थप्पड़ मारूंगी साला थप्पड़ मारूंगी थप थप थप्पड़ मारूंगी
2: Only on Radio Chinar 90.4
3: I feel good
2: A new vibe for the lovers of Western music with me, RJ Zeus.

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ। दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Channel 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

जी हाँ, अलविदा करने का तो सवाल ही नहीं, बिकॉज अभी पिक्चर बाकी मेरे दोस्त। अब सुन रहे रेडियो चैनल की हॉट फ्रीक्वेंसी पर मजेदार शो व्हाट्सअप। अगला सेगमेंट आई फील गुड, अ शो डेडिकेटेड टू द लवर्स ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक। हमने रेडियो चैनल सिटी तिरकाते रहा।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: Only on Radio Chinar 90.4. I feel good. A new vibe for the lovers of Western music with me, RJ Zeus.

0: विनय हटरा
1: तक तक तिन्ना सुन ओ हसीना कमर घुमाने दे पसीना आपका सीन में तोड़ना कोई गेम में अपना भी तोड़ कोई ना।

Beats on repeat. Beats on repeat, show Chunar Beats. Up enjoy kar rahe only on Radio Chunar 90.4 FM. Dei sari baatein ho rahi hain. We are talking about National Highway of Jammu and Kashmir. Both sides se traffic allow kiya ja raha hai. Aap aaram se ja sakte hain, aa sakte hain. And subject to fair weather conditions, better road conditions ke aap dekhte hue hi aap apna travel jo hai destination tak pahunch sakte hain. Apna plan better bana sakte hain. It's necessary jab hum plan banate hain aur usme hamare paas guidelines ho, hum TCU se contact bhi karte hain. कोई कंफ्यूजन होता है, चाहे फिर वो रामबन हो, जम्मू हो, श्रीनगर हो, आप कांटेक्ट करके बेटर वो कहते हैं ना कि क्लियरिफिकेशन के साथ आप ट्रैवल कर सकते हैं. ज़रूरी है, वो चीज़ भी ज़रूरी है. एंड एलो भी किया जा रहा है लाइट मोटर व्हीकल्स को, प्राइवेट कार्स को, हैवी मोटर व्हीकल्स को. जम्मू टूवर्ड श्रीनगर एंड श्रीनगर टूवर्ड जम्मू आप आराम से आ सकते हैं. बीस ऑन रिपीट है, बातें हैं, मौका है, दस्तूर है, कहाँ जाने का हजूर, मुझे बताइए. शो का हिस्सा बन जाए, सीट बेल्ट लगाना, फोकस करना सही चीज़ों पे, सही मैसेज देना, गलत जगह पे ओवरटेक नहीं करना, इन चीज़ों से क्या कुछ होता है या आप मुझे बताएंगे. शो का हिस्सा बन जाएंगे. और मैं जब ना पार नहीं इस पार ही हूँ, और इस पार का नंबर तो आपको बताया. दैयब हमारे साथ आप ये जो है आपका और मेरा वार्तालाप, यानी कि इस पार आप पहुंच सकते हैं 8999-0494 पर कॉल करके टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए. शो कैसे बन सकते हैं आप और हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर को और भी हॉट बनाने के लिए आपकी राय, आप पहुंचा सकते हैं वहाँ वहाँ तक जहाँ जहाँ तक पहुँचती है रेडियो सुनार की आवाज़.

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM।

ये तो सच बात है कि दिल तो हमारा नहीं लगता है, और ये दिल धड़कता ही रहता है कि ये सुनने के लिए कि आज दिल की बातें कहाँ तक पहुँच रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि दिल की ज़्यादा बातें हो रही है, अब दिल का ही तो दिन है। आज वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 29th ऑफ सितंबर को ये दिन, और क्या थीम है एंड क्या अवेयरनेस रेज करने के लिए हम इस दिन को मनाते हैं, व्हाई एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड आर सेलिब्रेटिंग दिस डे, वी आर टॉकिंग अबाउट इट। आप भी शो कैसे बन सकते हैं 88 999 0494 पर टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, शो चिनार बीच कैसा बन जाए।

शोजन और बीट्स हर दिल के धड़कन और दिल की बात हो रही है. आज है वर्ल्ड हार्ट डे. 29th of September को हर जगह दुनिया में मनाया जाता है. एंड वर्ल्ड हार्ट डे इज इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंट एंड विटनेस्ड एवरी ईयर ऑन 29th of September. एंड वाई वी आर सेलिब्रेटिंग इट सो दैट वी कैन टॉक अबाउट एंड डिफरेंट एक्टिविटीज आर हैपनिंग. अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है टू रेज अवेयरनेस अबाउट हार्ट डिजीज़, ताकि हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को प्रिवेंट कैसे कर पाएंगे, मैनेज कैसे कर पाएंगे, उस चीज़ के बारे में बात हो रही है. एंड ऑल्सो फोकस हो रहा है पीपल दे शुड नो, एजुकेट करना है लोगों को साइंस सिम्टम्स कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, फर्दर कॉम्प्लिकेशंस के लिए लोगों को इनक्रेज कर सकते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल ही है जिससे हम कंट्रोल प्रिवेंट और हम काबू पा सकते हैं इन डिजीज पे. सो वॉट इज़ द इम्पॉर्टेंस एंड स्पेशली वाई इट्स सेलिब्रेटिंग आज के दिन पे ही. एवरी ईयर अराउंड 1.7 crore पीपल डाई ड्यू टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड अप्रॉक्सीमेटली 31% ऑफ ऑल ग्लोबल मोर्टैलिटी. एंड इट्स लाइक इट्स जस्ट दैट की मोर्टैलिटी ही नहीं, इट्स अबाउट हार्ट स्ट्रोक्स, इट्स अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो हमारी लाइफ स्टाइल के रिलेटेड है बट हम उसको डिनाई कर रहे हैं. और एक वक्त ऐसा आता है जब हमें रियलाइज होता है कि दिस इज नॉट गुड फॉर अस, दिस इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. सो वी आर हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को कैसे प्रिवेंट करते हैं. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ल्ड हार्ट डे आज के दिन पे हम भी बात करें. आप भी कुछ बताना चाहते हैं 8999 0490 फॉरवर्ड कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए. शो चनार्वीज का समझ जाए.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हाय, मैं हूँ आरजे दीवा और आप सुन रहे हैं रेडियो चनार 90.4 FM।
1: ओ मैनू एक मोटरसाइकिल दिला दो ना।
2: कुछ और मंग लेना, मोटरसाइकिल ले।
3: दिला दीजिए ना।

देखिए दिल तो छोड़ आए हम यहीं पे और यहीं पे दिल की बात हो रही है, क्योंकि आज है वर्ल्ड हार्ट डे एंड वर्ल्ड हार्ट डे पे बात हो रही है कि कैसे हमने अपने हार्ट को हमेशा संभाले रखना है, अपने हार्ट का ख्याल रखना है एंड डोंट मिस अ बीट। आई बिलीव कि ये बीट वाला ना थोड़ा पर्सनल हो गया, जैसे आप शोचनार बीट्स की बीट नहीं बोलते वैसे अपने दिल की बीट भी ना बोलिए। थीम है इस साल के वर्ल्ड हार्ट डे का डोंट मिस अ बीट एंड इट हाईलाइट्स हार्ट डिजीज कैन डेवलप विथ सबटाइल और अननोटिस्ड वार्निंग साइंस एंड इट्स कम्प्लीटली अंडरस्टूड दैट कि हमने अपने हार्ट बीट को समझना है, हमने अपने साइंस को समझना है कि दैट वी शुड नॉट इग्नोर कि हार्ट के रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो होती है, जो हमें सिम्टम्स लग रहा है कि दर्द हो रहा है या फिर आपको लगता है कि सही नहीं जा रहा है, तो ज़रूर हम

नहीं विजिट करना है डॉक्टर, चीज़ों को लाइटली नहीं देना है, ट्राई टू इम्प्रूव योर हेल्थ एंड स्पेशली डोंट मिस अ बीट। फिलहाल के लिए मैं तो यही कहूँगी, आप मिस ना कीजिए चांस कि अब है शो म्यूजिक ऑन डिमांड, जहाँ पर आप अपने फेवरेट ट्रैक सुनेंगे 88999904। टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए और शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन जाएगा।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यूस।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिरार 90.4 FM हर दिल की धड़।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्द।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

तेरी यादों के सहारे जी रहा हूं, क्योंकि तू ही है आशिकी, तू ही है बंदगी। कभी सोचा ही नहीं था कि तेरे बिना भी जीनी पड़ेगी जिंदगी।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्द।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ, only on रेडियो चैनल 90.4 FM हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: हेलो, पापा की जिद के आगे हार गए। शादी हो रही है मेरी, हो सके तो भूल जाना।
1: ऐसे कैसे भूल जाऊं तुम्हें, प्यार छूटा नहीं है मेरा।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: दिल को
4: करार आ जाए
3: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
3: दबी यादें महक जाए
4: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
4: सुनिए सुहानी शाम
3: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
4: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खा

0: दिल को करार आ जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
0: 90.4 FM।

0: दिल को करार आ जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को करार आ जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
0: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: तुझे याद है ना आज पापा तुझसे बात करने वाले हैं?
2: उन्हीं से मिलने की तैयारी कर रहा हूँ।
1: सलून में?
2: लड़कों की खूबसूरती सलूनों में नहीं, बैंकों में निखरती है। अगर आज लोन पास हो गया ना, घर और घरवाली एक साथ फिक्स हो जाएंगे।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

अब मैं जो कहने जा रहा हूँ ना किसी ने कहा है ना किसी ने सुना है, मुलायजा फरमाइए हुजूर।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। रेडियो चिनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: कभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: तभी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करारा जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर

जिगर, चैन, आराम, राति, सुबह, दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, हिस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात एक बात लेकिन एक बात।

0: बता दूं? वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कहिए ना।

0: सवरिया, ओए होए ओ तेरी तिरछी नजरिया,
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया,
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे खतरिया, ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय।

0: साबुन की शोर बचाओ ओ मुए ओ मुर्गे ओ कौवे, पीछे पीछे आते हो क्या दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़, हो गोरी हो नटखट हो खटपट हो पनघट हो झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
0: तोरे नैना ओ मीठे बहना, तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय।

0: चल दिए तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना तारा रा रा रा। जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हे याने याने याने प्यार हो गया।

हमसे वो थी और समार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो

0: हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।
1: ओ मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा, मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या

धीरे मैंने खींचा, आहा हा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा, आहा हा। हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: भी है।
1: ए, क्या भला तो क्या बुरा, कामयाबी में जिंदगी है। बोलो।
0: सौ बातों की एक बात यही है।
1: क्या भला तो क्या बुरा, कामयाबी में जिंदगी है।

0: आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना।
1: हाँ। इतनी सी बात न समझा जमाना।
0: आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना।

0: ना यूं ही साथी
1: है बंदी मुट्ठी लाख की
2: और रेडियो चैनल की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: अरे बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना, अब ना ही कोई उम्मीद ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।